मुझे भी कहानी बड़ी लंबी पता था तो सबकी दिल की बातें सुनते हुए ये देखते कोई किताबी छिपाने की कोशिश करे इशारा नहीं देता, बाकी जानते सब है, देखते सब है, कोई कितना भी कहे नहीं, मैं तो कभी नहीं, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर्ड है, सिर्फ चिप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार बहुत होशियार तो भारत दर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद कहाँ जाएंगे वो धीमी तो जाएंगे जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें जो होती है कहीं बच्चे समझते हैं बातें ही बहुत होती है ना तो जो बातें होती है वो देखने में आती है ना सुनने में आती है ना बातें जितना बड़ा

你怎么明白的？Thank you.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ उठाने में तो शर्म नहीं, बाप दादा खुश हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे खुदा। जरूर मदद मिलेगी, सिर्फ इच्छा रखो बस। पढ़ना ही है, करना ही है, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ

0: chute. Хой, хой, бача. А пи-пи. Тик-ти. Пушарат ме. Пате, ате.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन परिवर्तक

Bacana.

Thank you.

Sleep.

सर्वा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बात, बाप दादा ने चारटी में देखी, मैं जानती।

este.

Óyeme. Yo quiero pelota. Óyeme. Man sabe, baby.

Tschüss.

sempre em deixaria aqui o bar. Yeah.

さ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, सदा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव, इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलते हैं? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। तो जो किट किट करती हो ना वो खत्म हो जाएंगे। इसको कहती है भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान। Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं, लाइट और माइट स्वरूप से व्यर्थ को जलाओ, कहाँ कहाँ से चुनकर

0: स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना फॉलो फादर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अच्छा।

सभी का अटेंशन, मेजर टीका मधुबन में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Listening.

Radio.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

चल नहीं है। मेरे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर बापू समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सब अच्छा है। कोई शक्ति है समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

cerrado.

के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सुव्यात, और विशेष

Teacher, quiero un fumé.

children.

0: क्यों नहीं करता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने का, आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देवान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। और वो खत्म होगा बेहद के वैराग वृत्ति से। सर्वस्तेक सुना बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस के फलक झलक आप लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का प्रभाव, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपके प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोगों को कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो। शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

0: जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sabe?

Ένα, τα πτωιά τη χαρτί.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देखे

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं, मैं कौन बाबा।

娃娃都给我个故事，故事比巴多的爱而开阿不给我是个巴卡里的故事巴的What's up?

0: वाह शब्द याद रखना, अगर कभी मूड ऑफ होना वाह शब्द।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सहज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों। बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरा जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को, मुश्किल योगी या सहज योगी, नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या, याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अगन है, अगन कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती, लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकते। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगले है, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा टीका उठाया, कोई टीका उठाए, टीका तो उठाए, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ और।

मत रखी। आता ऐसा मिला और यज्ञ रचा, यज्ञ के ब्रह्मा

0: दृढ़ संकल्प के कर तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हरेक का जन्म सिद्ध कार्ड, उसको यूज कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एकाकर कर सकते हो।

Plastic Arrow. इसलिए ये एकाग्रता का अभ्यास बहुत बहुत बहुत आवश्यक school.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा साथ।

साथ में। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। कमाते भी तो कि नहीं, अभी मिनट की बात भी कही दूसरों के लिए, कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट जाए, समझा
2: सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मालिक सदा मालिक होता है।
2: कितने वर्षों से जुड़ा
1: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो अभी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कहके और शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mr.

छोटे छोटे फिर संकल्प है, लेकिन कभी भी तो का समय पर दे सकते, इसलिए फियरत को भी कब करूं, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे, हाथ उठाओ, तो बाप दादा यही सौगात पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से की जाती है, तो बाबा

Sabe?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को भ्रमण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता के तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले पाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो पाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब सेवा करते हो तो ये चीज़

Chumbul, padre.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग करो सूक्ष्म रूप में भी, लगाओ कोई विशेषता या अपने या और किसकी। अपमान तो नहीं है, कई बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़े परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं, वाह फॉलोअर या परिवार परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न सबको राज भी करना है, और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

precise, Scuttle.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना।
3: और कुछ सोच लिया

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े सान करना पड़े सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, मजबूत करो, अचल बनो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्वप्रित 108वें लास्ट नंबर भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। दूसरे को सुख देते देते सने संस्कार भी सने सुखी बने जाने। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yeah.

见。

जैसे

ज्ञान का गुलाल

0: mal, get off of me. Atma bhi pavitra banti. Aur atma ke saath sharir bhi pavitra banta. Itni shreshth pavitrata bani kaise
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सेफ।

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जी।

संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना पाप से सहयोग मिल सकता है। सेवा को बढ़ाओ, अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को अटेंशन उस हलचल

विश्व कल्याणी का

0: Chiaro. Deci vedeți că
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तीन मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया तीन मास पास करने है, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Red Pacha.
Yep.

0: साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। तेरे को मेरे को एक तो में चेंज कर देना, मेरा तेरा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होंगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या? बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है। लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो, जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

miado.

Master Sarvashaktivan. At the moment.

0: Esa verdad.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं सेवा दरी हो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए, और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आ गया। क्यों कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला हिसाब किताब। इसीलिए निर्स्वार्थ सेवादारी, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ, दूसरा समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर किसको चांस तो उसमें भी आपका शेयर जमा हुआ, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे लंबे नहीं चलो। ठीक है, हो गया दिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू याद करते हो थक गए अभी क्या करे, थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा उठते जागते कर्म करते सेवा करते सोते साथ देने के लिए आइए परम धाम छोड़ के क्यों आए, साथ देने के लिए ही तो आई है। इसीलिए आप सबके सहयोग देने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त बने, व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में सहयोग की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया, शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, सेवा सेवा सेवा सिर्फ वही याद है। बाप को किनारे बैठ देने के लिए अलग कर देते हो, बाप भी साखी होके देखते है, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यही। तो

0: शक्तिवान सात का ऑफर कर रहा है। ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना तो बाप दादा भी साखी होके देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। संगम युग के सुख और स्विचों को इमर्ज रखो बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है बोलता है बाप तो क्या कहेंगे। ये तो राइट है कि याद रहता है लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है। स्थिति क्या होती है ये मर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति इसमें अंतर है अंतर है पांडव है अंतर तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रहते। इमर्ज रूप का नशा शक्ति संयोग सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। बोल नहीं सकता है ये राइट हाँ कोई विघ्न के वश हो जाती है तो भूल भी जाता है लेकिन वैसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: लक्षण विशेष

Nashed.

Nostromo a una. Coi voi scherzi.

Шиш, бабка, Вардане. Сафальта. Абкачанам седат.

Seitsemän potikan.

संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी।

Et c'est les mamans.

0: שושנת קסמן.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता बनाओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्रह्मांड जीवन है मसे की, संगम युग है मसे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह वाह है न शरीर व्याधि में भी आया है, वाह ये भी बोझ उतरता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे
2: बन जाओ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए, सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा।

Sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारी दुनिया के दुखों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सदमा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को याद देते हैं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेकिन कोई रहे नहीं, किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचा। वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बदल जाती है।

Right.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Satan. Santos Terrene Valley. Santos de Mariaco.

Chador. ¿Qué tenéis, Sundar? Chamac. Chamac.

name.

Sorry.

Santo Strong.

Say.

Tiens, ça

そっとし

కెత్తుని పీపిస్తుంది. Yeah.

Stay.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगम योग श्रेष्ठ है वो ठीक है, हीरे तुल्य लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है आपके बहने दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमार्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सी फॉर बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है छियासठ वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रही है कि इस समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण समझा क्या करना है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सभी

Something.

durch bist.

Hoşçakalın.

Musik.

しれない。歩くしかない。ヘパさん

आप सुन रहे हैं शिवारी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा की रोहानी ड्रिल, याद है ना? Yeah.

चलो।

sunside. Dusra na koi. Isse ekagar. Simple.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्व की स्थिति में भी चार बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे दीवार पुरुषार्थ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा जब अमृत वेले चक्कर लगाती है विश्व में, तो देख देख सुन सुन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Knock.

0: Sì. Poi gioco. Padam, padam, cona. Ma va a raccogliere.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Juguetão. Foi.

को क्यों ढूंढा?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करे न कर, मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Hilf mir, ey.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृत्त कैसी भी है कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना करना भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं है, ये तो है ही ऐसे नहीं। सुनाया ना, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते, तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा करना ही। हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा। बाकी सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएंगे। दिल शिकस्त नहीं हो, योग श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ करते जाओ और पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी, आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे। आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन जैसे साइंस
2: ऐसे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए।
2: छोटे बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Bye.

Rose.

Sucks.

sempre se enganou. Tchau.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Bravo, parça.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तोड़े की अपने अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर इसी है तो चाहता इसी हो जाए अलबेला हो जाए नहीं पता देने का ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा समय अनुसार जितना सेवा का उपागोत्सा अभी प्रैक्टिकल में है और बना

इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमा गोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमा गोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभाशय रख

बाप्ता दा खुश है। लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, दीवार पुरुषार्थ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे है, पहुंची जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थ ही बनो, पुरुषार्थ ही तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थ ही है। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थ ही तो हर एक बच्चे को क्या बनना है, तीव्र पुरुषार्थ ही बनना है। हाथ उठाओ, बनना है, बनना है या बन के चल रहे हो? ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, तीव्र पुरुषार्थ ही रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। ये लक्ष्य है, जिसके दिल में ये लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी उठाते। चलो, थोड़ा ठंडा है तो दीवार कर देना। योग दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती, लेकिन आप सब बच्चे कौन हो? आपका टाइटल क्या है? मायाजीत। कौन मायाजीत बनने वाले वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाए। बाप दादा को खुशी होती है कि हिम्मत तो है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप तो है। हिम्मत नहीं हारना, बाप दादा का सहयोग पहले, हिम्मत हारा तो सब गया। हिम्मत है तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स दिल्ली वालों का पीछे देखो कितने टीचर्स चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है। अच्छा। 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते

jest teacher's school.

Erik, teacher. Jealousy. Say it.

0: parte quieta. Cardiana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अश्वगंधा खांसी के लिए
2: है। बगीचे में दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन लोगों को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी पक्का हो गया।
1: गुलजार दादी गई थी इनों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले इनों का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दाबा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी कहा है, कि अभी Peace.

Stop.

इतना स...

Es ist

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर के आगे परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच उनकी बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों, कैसा, ऐसा तो नहीं। इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों, क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी को चुक नहीं, अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं चुके।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन मान धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है। अच्छा दिला रहे जी, पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है। जब धन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर मेरा पन है कुछ होता ही क्या? धन मन धन जन सब हवाले कर लिया। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना कि मन मेरा है, यूज करना है मेरा, समझ गया?

Creepy.

0: Thailand. 7 eggs shoved. Yad krog me. Parmatam agya kari. Bacha. Babki agya hai. Yad nahi hai. Wo socho. Jo. आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को सुतई याद होता है, सुतई प्यारा होता है, सुतई बाप के समीप होता है। तो चीख करो, कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा को किनारा करने।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

しい。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा आवश्यकता है जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो, इसलिए खुशनुमा चेहरे या खुशनुमा मूर्ति

Some.

0: परिवर्तन कर ले। आज मन्ना की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं, वो है अल्पकाल के साधन। और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवेल और वावाले के जर कमाल है परमात्म आत्माओं की। ये शिवा समय प्रत समय जितना परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उनको सहारा बन जाएंगे, क्योंकि आप है ये खुश नसीब।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

week.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया, ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रख और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है जोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुला रहे
1: हैं। दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे, दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन। ऐसा वर्तक के स्वरूप देख फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सब का चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों

香槟啊。今你不让酒店啊，都得看看今不让我们Absolutely.

소주 빵갈 사마실리아 소질리아 돈밥다당 바나인 보리카데데 잡이추란 번쭈게 도펠툼 바나인바데 Fertoso, va.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है, देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। Yeah.

0: विजय की चैलेंज करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन आता है तो अवश्य देकर

言あれ。

0: pieces su apartvinias. Yuk formane. Yato forman. Yakar forman. Neiman tio. Tu forman ki padle. Arman milte. Subo ko ut karke. Dil mein arman hota hai na. Meri pavitrta swapan mein kadam. Ye kitna arman hai. Karan. Anna bela. जैसे आया वाया वाह की बातें करते करते सो जाओ क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थी होते हैं तो कहीं कहते हैं और तो टाइम मिलता साथ में एक कमरे में जाती है तो लेन देन करती है लेकिन काफी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सुना नहीं जरूरी बात है तो बाहर सुनाओ ये तो को सोते सोते नहीं और बातें करते करते कहीं तो 12:30 भी बजा देते मस्त होते हैं बातों में उनको टाइम का पता नहीं ऐसे नहीं समझना हमको तो कोई दिखता ही नहीं बाप दादा देखते हैं क्योंकि निंद्रा निंद्रा भी बहुत शांति देती है वो भी बहुत सुख देती है इसीलिए मिक्स हो जाता है अगर पूछेंगे ना कहेंगे नहीं मैं बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ देखो नींद को भी आराम कहा जाता है ना अगर कोई बीमार भी hin til at se Frisjord gå ut til henne. Da kan det ikke jobbe med barnfri.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मेरा मन आया कहाँ से, जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तुम मेरा मन आया कहाँ से। आप सभी तो बिन कोटि बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोटि हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुनाओ।

0: बाप दादा ने देखा है, मैचर रटी अपन ने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज कर दे, पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाते और सफलता उस दीवार के अंदर विजय आपका स्लोगन है, दस वर्ष का है, पक्का है, पक्का सभी का। जब ये अभी का स्लोगन है, भविष्य वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए, पर्सन चित या पर्सन चित, तो माया अपन नहीं कमजोर संकल्प चार बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजय है इससे इस सच कमजोर जाल को समाप्त करो, लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त करने की, धीरे धीरे नहीं करो, फट सेकंड में इस जान को पाने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। सफलता मेरा बर्थ राइट, ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट, इसको कोई छीन नहीं सकता, ऐसा निश्चय सदा पर्सन चित सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Just

правда не їх сам.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छे लिस्ट में जो नाम पाला कर सकते

0: अच्छे अच्छे सुनाते भी है, लेकिन वो तो फंक्शन में सुना, लेकिन लगातार जीवन का अनुभव कर ये अटेंशन देंगे तो निकलने वाले है, क्योंकि बाप दादा ने लिस्ट जो देखी सभी की उसमें ऐसे योग्य है, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके उनों को आगे बढ़ो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
1: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो, स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

साइलेंस की शक्ति की सकाश

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में

0: और शरारत कर रही है। चमा कपूर शरारत आप ही कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते। दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है। अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो।

una volta a cena e si lì d'ora d'ora giudine d'ora giudine a calma dit bannare to jesabi rocavate ये बॉडी कॉन्शियस मिले अच्छा है लेकिन बनाने वाले को अच्छा ही भले धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावत नहीं और बाप के प्यार जो बाप की प्यारी है वो सदा से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी साइंस के साधन

0: उसके आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संग

discoteca perché cammi a panir pusher kine leke namme manme shanme pochne me akhe इंचार्ज बनाने में सेवा में विशेष पाठ देने में ये कमी ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान और

लेकिन जब सेवा पर जाओ तो चीख करना एक दिन में इन दोनों में से

0: अब समान बनना कोई नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: que acártense. Chao. The last so fast fast so again as
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है स्थिति
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा देख रहे थे कि सबसे

0: शुभकामनाओं की वृद्धि से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवादारी समाज

Chatwara.

नहीं होके पढ़ेंगे।

नहीं आता।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्वचिंतन इसको नहीं कर जाते, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना या ज्ञान की पॉइंट्स को Thank you. उचित सेवा के मार्क्स जमा हो गए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

उससे नहीं भगाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे करने लग जाती है।

tomará.

Yeah.

is Samip.

ASMR.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको

0: भगवान के दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष पे नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष पे नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा। आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कहती है तरस पड़ते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।